इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियाँ कई देशों के संघर्ष के दौर की, वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में, कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी भव्य और प्राचीन मंदिर के शिखर पर लगे ध्वज पताका को देखा है? मंदिर अपनी जगह पर अडीग और शांत खड़ा रहता है, लेकिन उसके सबसे ऊंचे शिखर पर जो रेशमी ध्वज लगी होती हैं, वह हवा के हर छोटे बड़े झोंके के साथ फड़फड़ाती हैं, दिशा बदलती हैं। जब तक हवा शांत है, ध्वज सुंदर लगता है। लेकिन सोचिए, अगर कोई अचानक चक्रवात या आंधी आ जाए और वह ध्वज इतनी जोर से खींचे कि उसके खिंचाव से मंदिर का वह भारी भरकम गुंबद और पूरा मंदिर ही अपनी नींव से हिलने लगे, तो क्या होगा? वह पूरा देवालय ढहकर मलबे में तब्दील हो जाएगा। हमारा यह जो जीवन और शरीर है, यह भी पत्थरों से बना

इसी का दर्शन करा रहे हैं। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह सूत्र। काया देवल मन धजा, विषय लहरी फहराई। काया देवल मन धजा, विषय लहरी फहराई। मन चल्या देवल चले, ताका सर्बस जाई। काया

स्थिर और शांत बना रहें। जब देह मंदिर में चेतना का दीपक जलेगा तो आपके पूरे जीवन में दिव्यता और परमानंद का प्रकाश फैल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर स्वागत करते हैं आप सबका। हैप्पीनेस इंडेक्स की इस श्रृंखला में बहुत सी बातें सामने आई हैं और अगर पिछली कड़ी को देखें तो याद आता है कि हमने बात की थी कि क्या एंटरटेनमेंट खुशी दे रही है। हम अभी तक ये सोचते थे कि हम टीवी जो देख रहे हैं या फिल्म देखने जाते हैं या किताब पढ़ लेते हैं वो हमें एंटरटेन करती है कुछ टाइम तक, मेरे थॉट्स जो मुझे तंग कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनसे मुझे दूर ले जाती है, मैं किसी और चीज़ में इन्वॉल्व हो जाता हूँ। लेकिन फिर ये बात समझ में आई थी कि क्यों कहा जाता है कि टीवी देखना या फिल्म देखना एक एडिक्शन बन सकती है, क्योंकि जैसे ही हम जो वहाँ सिचुएशंस हो रही थी उसमें इन्वॉल्व होते जाते हैं, उन्हें अपना थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसे चूज करने का हक उनको दे देते हैं। ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी बात थी, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, एक्सपीरियंस करते जाएंगे, हमें समझ में आता जाएगा। आज थोड़ा इसी बात को और आगे बढ़ाते हैं कि हाउ डज इट रियली वर्क। हमारा सौभाग्य हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: इनफैक्ट सिस्टर शिवानी, इट्स लाइक अगेन आई कैन अंडरस्टैंड नाउ व्हाई पीपल से कि आप रोज हमारे साथ ड्राइंग रूम में होते हैं, बात कर रहे होते हैं, क्योंकि इट्स अ जर्नी और हर बार हमारा जो अनुभव है, हम बात यहाँ कोशिश करते हैं समझें, फिर उसे जाके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो एक रिकैप लेना चाहेंगे आपके साथ कि व्हाट रियली हैपेंस जब मैं किसी भी टीवी के प्रोग्राम में या फिल्म में या नॉवल में इन्वॉल्व हो रहा होता।
1: Yeah, it's not that we're not trying to say के हम ये नहीं देखें। Fundamental of course हम choose करें क्या हम देख रहे हैं, क्योंकि information तो अंदर feed हो रही है। सिर्फ अब ये ध्यान रखें देखते हुए भी कैसे देखें। You know, and it's applicable both the places। जैसे movie को या TV को देखते हुए कैसे देखें, और वही चीज़ फिर आपकी practical day-to-day life में आएगी कि ये जो drama सारा दिन, इसको भी हम drama ही कहेंगे। My journey of life is a drama। Why is it a drama? Because एक scene के बाद दूसरा सीन, विथ सो मेनी एक्टर्स इन्वॉल्व्ड। तो दोनों तरफ हमें ये सीखने को मिलता कि ड्रामा की हर सीन को कैसे देखें। तो जब हम मूवी देखते या टीवी देखते, जस्ट वॉच योर सेल्फ। अगर आप हाफ एन आवर का सीरियल देख रहे हैं या 3 घंटे की मूवी देख रहे हैं, सिर्फ आज शाम को अगर आप कुछ देखें तो उसको देखते हुए अपने मन को बीच बीच में देख लेना कि वो कैसे कैसे।
0: एक्चुअली आई वॉन्ट टू शेयर व्हाट हैपेंड टुडे। मैं जब आ रही थी तो पहले मैं कुछ अपना सोच रही थी, ड्राइवर ने गाना चला दिया, वो मेरा सबसे फेवरेट गाना था, एकदम से मुझे स्ट्राइक किया मैं गाना सुनने लग जाती हूँ तो मेरा थॉट खत्म हो जाता है। लेकिन मैंने इस बार चाहा कि नहीं, मैं जो सोच रही थी वो करती रहूं, बट उसकी अट्रैक्शन इतनी थी गाने की, गानों के शब्दों की, और तब मैंने देखा कि गानों के शब्द ना सिर्फ मुझे इन्वॉल्व करते गए बल्कि वो इमोशन भी क्रिएट होने, क्योंकि मैं देख पा रही थी, हम इस पर बात कर चुके थे इसलिए। तो अब मैंने सोचा कि नहीं, मुझे वो इमोशन तक नहीं जाना, मुझे वापस आना है अपने थॉट पर मेरा मन नहीं था।
1: इफ आई एम वेरी वेरी स्टेबल, अगर मैंने प्रैक्टिस नहीं किया है, दिस ऑल्सो डेवलप्स धीरे धीरे ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन मेरी बॉडी की कुछ वो होती है, एडिक्शंस होती है, वो हॉर्मोन्स की मुझे आदत पड़ी हुई है, तो मुझे कुछ ऐसा बाहर से चाहिए होता है स्टिम्युलस, कि वो स्टिम्युलस आएगा, वो स्टिम्युलस मेरे अंदर वो इमोशंस क्रिएट करेगा, और जैसे ही वो इमोशंस क्रिएट होंगे मेरे बॉडी के अंदर भी वो हॉर्मोन्स सिक्रेट होंगे एंड आई फील गुड, जैसे कि मुझे वो चीज़ मिल गई जो वो चाहिए थी। फिर इवन भले वो दर्द के ही इमोशंस हो, वो एड्रेनालिन सिक्रेट हो, लेकिन वो सिक्रेट हुआ ना, वो बॉडी को जो चाहिए था वो सिक्रेट हुआ, आई फील गुड एंड देन आई से दिस इज एंटरटेनमेंट। यू नो, ये मुझे चाहिए, दिस मेक्स मी फील गुड इवन इफ आई हैव क्राइड फॉर हाफ एन आवर। हाउ कैन आफ्टर क्राइंग यू फील गुड अदरवाइज? तो कोई लॉजिक ही नहीं। आप आधा घंटा पिक्चर देखा, आप कितनी बार रोए उसके साथ, यहाँ तक कि आपने हैंकी तक निकालना पड़ गया, एंड देन वी से आई फेल्ट गुड आफ्टर वॉचिंग द मूवी। वॉट फेल्ट गुड? समवेयर दोज इमोशंस गॉट क्रिएटेड, द बॉडी सिक्रेटेड व्हाट इट हैड टू डू, एंड आई वॉज लाइक ओके दिस इज वॉट इज माई नीड। जैसे ड्रग्स है, डैमेजिंग है, लेकिन बॉडी को आदत पड़ गई है ना, तो जब तक बॉडी लेती नहीं है उस चीज को, लेना उसको अनकंफर्टेबल लगता है। तो इसी तरह अगर मुझे एक पर्टिकुलर प्रोग्राम से वो स्टिम्युलस मिलता है, देन धीरे धीरे धीरे आई स्टार्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, कि ये तो मुझे देखना ही है। अगर आज मैं पहुंच नहीं पाई टाइम पर, या वो लाइट नहीं है घर में, एंड वो प्रोग्राम नहीं आ रहा, या आई विल फील वेरी वेरी अनकंफर्टेबल। सो दिस इज लाइक जिसको किसी को वो नहीं मिला जो उसको उसकी आदत होती है। जैसे आपने वो सॉन्ग के साथ किया, नेक्स्ट टाइम हम सभी एक्सपेरिमेंट इसको करके देख सकते हैं कि जब हम कुछ देख रहे हैं, पहले जब हम बैठते हैं जस्ट देखने के लिए, आर माइंड इज क्वाइट स्टिल, यू नो, इनफैक्ट पहले तो आर माइंड इज विद अदर थॉट्स, So this is about watching our mind. It's very interesting कि जैसे ही हम आकर बैठे टीवी के सामने, पहले थोड़ी देर मेरे मन में कुछ और चल रहा है जो मैं छोड़ कर आया हूँ अभी ऑफिस का काम या घर का. धीरे धीरे वो थॉट्स खत्म हो जाती हैं एंड यू विल एक्सपीरियंस अ लिटिल स्टेज वेयर यू आर इन यू नो नॉट टू मेनी थॉट्स. दिस माइंड इज बिकमिंग साइलेंट क्योंकि ये वो वाली जो बातें लेकर आया था घर वो बातें तो खत्म हो गई. तो ये माइंड थोड़ा थोड़ा स्टिल हो जाता है. ये जो स्टिलनेस की स्टेज है ये है कि यू आर हियर प्रोग्राम इज देयर एंड आप उसको डिटैच्ड ऑब्जर्वर की तरह आप उस प्रोग्राम को देख रहे हैं. उसका इफेक्ट मुझ पर नहीं पड़ रहा है लेकिन ये बहुत थोड़ी देर रहता है. धीरे धीरे हमारी जो नेक्स्ट स्टेज आती वो आती है कि हम जजमेंटल होना शुरू करते हैं. ऐसे क्यों बोल रहे हैं ये, ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे व्हाटएवर आवर ओपिनियन.
0: देखा उसने ऐसे किया तो अब ऐसा ही होना चाहिए. अब व्हाट नेक्स्ट,
1: व्हाट इवन इन द क्रिकेट मैच ऐसे क्यों,
0: ये बॉल
1: यू सी. सो द सेकंड स्टेज बिकम्स जजमेंटल कि हम अपना ओपिनियन चाहते हैं कि दैट इज हाउ इट शुड, ऐसे करते तो इवन द एक्टर्स क्लोथ्स द सीन और व्हाटएवर एवरीथिंग. तो आई स्टार्ट बिकमिंग जजमेंटल. जैसे ही हम जजमेंटल शुरू हुआ, मतलब क्यों, क्या, कैसे के क्वेश्चन मार्क की सीरीज में गए, ये जो स्टिलनेस थी वो क्या होगी,
0: वो खत्म हो गया.
1: बिकॉज वो माइंड ऐसे ऐसे, ऐसा क्यों, ऐसे कैसे, ऐसे. तो द माइंड स्टार्ट्स गेटिंग डिस्टर्ब्ड. वो स्टिलनेस हमारी खत्म हो गई. सो दिस वाज द सेकंड स्टेज. द थर्ड स्टेज जो आती कि हम उस कैरेक्टर की स्टोरी के अंदर ही
0: इन्वॉल्व हो जाते,
1: पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं. एंड दैट स्टेज विल बी कि वो कैरेक्टर जो इमोशन वहां एक्सपीरियंस कर रहा है वो इमोशन आई स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग हियर. तो फिर आई एम टोटली इन द स्टोरी, लाइक पूरी तरह से. देन आई हैव नो अदर थॉट एंड देन आई माय क्रिएटिविटी इज ओवर बिकॉज नाउ आई एम ओनली क्रिएटिंग व्हाट दे आर क्रिएटिंग. मेरी अपनी अब कोई नहीं रह गई.
0: मेरे पहले तो मैं कर रही थी वैसे,
1: उससे पहले
0: जजमेंटल जब मैं हो रही थी.
1: पर जैसे जजमेंटल हुए तब क्या हुआ, क्रिएटिविटी नहीं थी. जैसे ही आप जजमेंटल होते हैं आपकी एनर्जी तो उल्टा खत्म होने लगती है क्योंकि आप किसी और को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते. आई कैन सिट अक्रॉस द टेलीविजन एंड कीप ऑन सेइंग व्हाट आई वांट टू से. मैं कितना भी जज

0: मेंटल हो सकती हूँ, कैन आई डू एनीथिंग अबाउट इट? मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ सामने से बैठकर, और मैं कहूँ ये नहीं पहनना चाहिए था, ये पहनना चाहिए था, ये सेट ऐसा नहीं, कैन आई डू एनीथिंग अबाउट इट? नो, आई एम थिंकिंग ऑफ दोज थिंग्स विच आर नॉट इन
1: But my control.
0: My control.
1: But I have a right to have my own opinion.
0: That's okay. That's okay. That's fine. You have a right. लेकिन आप बस बैठे हैं और यहाँ आपका माइंड कंटिन्यूसली वो थॉट्स क्रिएट कर रहा है उन चीजों के बारे में जो आपके कंट्रोल में नहीं है. Useful energy?
1: No, it can't be. Yes.
0: Useful energy?
1: Actually, I know it's of no use.
0: It's a drain. ये आपका drain शुरू हो गया कि जो वो stillness थी वो आपका ड्रेनेज शुरू हो गया क्योंकि आप एक एक वो थॉट क्रिएट कर रहे हैं जो आपके कंट्रोल में
1: एक्चुअली, और इससे मुझे आदत भी पड़ती जाएगी फिर.
0: एग्जैक्टली, यही चीज तो फिर प्रैक्टिकल लाइफ में आएगी ना, डे टू डे.
1: हर एक को, ओह यस,
0: जो आपने कहा डू आई नॉट हैव द राइट टू हैव एन ओपिनियन, यस,
1: सो देन आई हैव माय राइट विद एवरीवन.
0: सारा दिन सर ये बिल्कुल सेम चीज फिर रोज के ड्रामा में होती है ना. दैट्स व्हाट वी सेड, जो टेलीविजन के ड्रामा के साथ पहले प्रैक्टिस होती है वही चीज फिर हैबिट बन गई, तो वही चीज फिर मेरे डे टू डे लाइफ में आती है. सो वी वेंट थ्रू दीज थ्री स्टेजेस, पहले स्टिलनेस, फिर जजमेंटल, एंड तीसरा तो पूरी तरह से इन्वॉल्व. एंड जब पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गई तब तो अपनी थॉट क्रिएट करने की मेरी अपनी कैपेसिटी है वो भी भूल गया, मेरी थॉट की पावर मैंने टोटली उस प्रोग्राम को दे दी. नाउ दिस Because I'm doing every day. It's not that I'm watching a movie just once in a while या मैं टीवी देख रही हूँ once in a while. नहीं, हम रोज कर रहे हैं. तो कोई भी चीज जो रोज करेंगे
1: वो
0: बन गई मेरी हैबिट. अब जो हमने पिछली बार भी देखा कि अगर गुस्सा ऑफिस में सिर्फ कर रहे हैं ये सोच के कि गुस्से से काम होता, लेकिन वो मेरी अगर बन जाती है हैबिट, तो वो हैबिट मेरे साथ हर जगह
1: मेरी पर्सनालिटी बनती. Yes, now I understand it actually.
0: अब ये था, शुरू किया था जब बैठ कर देखना, मैं एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर, एक साक्षी दृष्टा थी, लेकिन आधे पौने घंटे के अंदर अंदर मैं उस ड्रामा के अंदर पूरी तरह से घुस गई. अब यही चीज फिर सारा दिन होती क्योंकि अब मुझे हैबिट पड़ गई है. अब धीरे धीरे तो वो साक्षी दृष्टा होना कैसे वो ही हमें आज नहीं पता चलता, और इसलिए आज हमारी वोकैबुलरी ये हो गई है कि अटैचमेंट तो नेचुरल है, डिटैचमेंट का कॉन्सेप्ट कंफर्टेबल नहीं लगता. लोगों को बहुत कोल्ड लगता है कि हम बहुत स्टिल हैं, हम बहुत डिटैच्ड हैं, हमारे ऊपर असर क्यों नहीं पड़ रहा. लेकिन ये जो असर पड़ने का प्रभाव पड़ने की आदत जो पड़ी थी वो इससे पड़ती है.
1: वो कंटिन्यू. इनफैक्ट अगर हम देखें वो जब अभी हुआ था, जब मुंबई का जो अटैक हुआ था, तो उसमें मुझे कितने दिन तक, दो दिन लगातार चला था, हम पूरा टाइम डिस्टर्ब्ड रहे थे.
0: लेकिन अब इसको ही अगर आप देखो जो न्यूज में अगर कोई यस एक इंसिडेंट हुआ है एब्सोल्युटली के वो नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है बात, लेकिन जब हम उसको 24 घंटा हर रोज स्ट्रेच करते हैं, और उसमें हम करते क्या हैं, किसी के साथ कुछ हुआ हम उसी को लेकर वो रोते हुए को बार बार दिखाएंगे, बार बार उसको पूछेंगे आपको कैसा फील हो रहा है. समवेयर वी आर यूजिंग इमोशंस एंड द अदर पर्सन्स फीलिंग टू सेल इट इन टू द मार्केट. और क्यों? क्योंकि हम फील करते हैं कि ये लोग देखना चाहते हैं. दिस साउंड्स वेरी harsh, this sounds very harsh, but it is the truth. हमें लगता है कि ये रहम है, actually नहीं, उनको रहम नहीं चाहिए, उनको compassion चाहिए, उनको love चाहिए, लेकिन love नहीं है. अगर हमने भी pain create किया कुछ भी ऐसा देखकर, जब ये पूरा terror attack हुआ, तो what was the information that was being flooded everywhere? कि आप सबको गुस्सा होना चाहिए इस बात को लेकर. Why are you not angry? People should get angry. वही तो solution है. How can anger be the solution to anger? जिन्होंने जो किया, that was a sign of anger, resentment. Already उस शहर के अंदर जो वातावरण फैल चुका था वो दर्द का था. बहुत लोगों की जीवन ऊपर नीचे हो गई थी, बहुत लोग डर में थे, अपने अपने घरों में ट्रैप्ड थे. इन एन एनवायरमेंट जहां ऑलरेडी इतना पेन है, इतना दर्द है, We're trying to say get angry.
1: नहीं, and in fact वही बात कर रही हूँ कि वो सिचुएशन, अगर हम जो हम जिस मुद्दे पे थे, उस सिचुएशन ने जो कहीं और हो रही थी, उसने पूरी तरह से पूरे जो वॉच कर रहे थे, टीवी देख रहे थे, उन सबके माइंड्स को कैप्चर ही तो कर लिया.
0: Yeah, but not even see, अगर हम देख भी रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद मेरे माइंड में इमिजिएटली ये आना चाहिए कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. I'll tell you a very beautiful thing that happens at the Brahma Kumaris. We're not saying ke ye hona chahiye jo. Something very, very nice that happens here is ke jab bhi duniya ke kisi bhi hisse mein कुछ भी हो जाता है, थोड़ा भी ऊपर नीचे, चाहे वो नेचुरल कलामिटी है या वो कुछ ऐसी बात है, इमीडिएटली एवरी वन नोज दिस. हर सेंटर पर जितने भी हम सारे भाई बहने हैं, वी हैव कलेक्टिव मेडिटेशन. हम सब इकट्ठे मिलकर, अलग अलग अपनी अपनी रीति से घर पर तो करते हैं, लेकिन कलेक्टिव टाइम फिक्स करके हम सब सेंटर पर बैठते हैं और सेंटर पर इकट्ठे मिलकर वी क्रिएट वाइब्रेशंस ऑफ पीस, लव एंड पावर. क्योंकि भगवान परमात्मा हमेशा ये कहते कि दर्द तो ऑलरेडी है. आप दर्द के बारे में चर्चा करते हो, दर्द की खबरें सुन रहे हो और दर्द क्रिएट कर रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इस टाइम? Don't just see it as a stimulus. See what is my responsibility now. तो वहाँ दर्द है, हमें क्या भेजना? हमें प्यार भेजना, हमें शांति भेजनी. लेकिन वो कब भेज पाएंगे? जब हम डिटैच्ड हैं. लेकिन अगर मैं ही दर्द में चली गई, हाय क्या हुआ, कैसे हुआ, तो where is the power?
1: और इनफैक्ट unknowingly मैं दिए ही जा रही हूँ, भेजी जा रही हूँ.
0: हमें लगता है कि ओ मैं तो दिल्ली में बैठी हूँ, ट्रेजेडी तो बॉम्बे में हुई, बट इट्स नॉट ट्रू. इट्स अ कलेक्टिव वाइब्रेशन.
1: डेफिनेटली सिस्टर शिवानी, ये तो बात समझ में आती है. लेकिन जब अगेंस्ट चीजें हो रही हैं सोसाइटी के नॉर्म्स के, ह्यूमन काइंड के, तो हम ही तो हैं, इंसान ही तो हैं जिन्होंने अपनी वॉइस भी रेज करनी है. तो अगर हम स्टेबल होके देख रहे हैं या मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं उस चीज को, इजंट इट बीइंग नॉन रिएक्ट, आई एम नॉट डूइंग थिंग्स,
0: you become very passive.
1: Yes, you know, like मतलब आप बहुत स्लो हो जाते हैं. आपको अपनी बात कहने का भी तो वो जरिया चाहिए.
0: Absolutely. लेकिन अपनी बात कहने का जो तरीका है, एक तो वो मैटर करता, और दूसरी अपनी बात कहने के लिए पहले आपकी सोच में तो बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए ना. जब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, सी एंगर, पेन, हर्ट, उस टाइम जो हम जिस अटैक के बारे में बात कर रहे हैं, जो तीन फंडामेंटल इमोशंस बहुत हैवी थे, एंगर, पेन, हर्ट, रिजेंटमेंट, एंड स्पेशली वो पूरी, यू नो, एक पूरा एक फ्लेवर जो क्रिएट हो गया हर जगह, इट वॉज दीज थ्री. जब हम इन तीनों इमोशंस के वशीभूत हैं, ये तो डू वी हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट? क्या हम उस समय राइट सोच पाएंगे, राइट बोल पाएंगे? अब इसी स्पेसिफिक बात को भी अगर हम देख लें, जितने दिन वो न्यूज़ में था, हम देख रहे थे क्या हो रहा है, सो वी वर ऑल्सो, यू नो, एवरी वन इज़ वेरी एंग्री, एवरी वन इज टॉकिंग अबाउट इट. किया हमने क्या इज अ क्वेश्चन मार्क. हमने क्या किया अपने देश के लिए?
1: कलेक्टिव एंगर जो था,
0: कलेक्टिव एंगर था, कलेक्टिव एंगर का रिजल्ट,
1: अगेन, यू नो, दिस इज व्हाट पीपल हैव सीन.
0: सी, इफ यू वांट टू वॉइस योर ओपिनियन, ऑल द मोर यू रिक्वायर स्टेबिलिटी. वी थॉट के एंगर एंड रिएक्शन, हमारी आवाज ज्यादा, यू नो, जैसे नॉर्मल भी, वो तो बड़ी बात है, छोटी बात पे ऑफिस में भी हम देखेंगे या घर पे भी, कि मैं जोर से चिल्ला कर बोलूंगा ना तो आपको ज्यादा ठीक से समझ में आएगी. सी द थिंग इज, फर्स्ट इज इम्पैक्ट ऑन यू, कि आप जो इमोशंस क्रिएट करते हैं उसका आपके ऊपर इम्पैक्ट, फिर कलेक्टिव सब लोगों के ऊपर उसका इम्पैक्ट, फिर उसका एंड रिजल्ट. इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, हमने बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं, हमने सिर्फ उसके बारे में जितने दिन वो न्यूज़ में था, हम भी न्यूज़ के साथ थे, हम भी उसको, यू नो, ऑफिस में भी वही बात हो रही है, घर में भी वही बात हो रही है, हमने किया क्या? 10 दिन 15 दिन, आई थिंक दैट्स अबाउट इट ऑल. उसके बाद न्यूज़ चेंज हो गई, कोई और चीज हो गई दुनिया के किसी और कोने में,
1: पब्लिक मेमोरी बहुत छोटी होती
0: है, हम उसके बारे में बात करने लगे. जिनके जीवन पर उसका इफेक्ट हुआ, जो आज दर्द में है, वो तो आज भी दर्द में है. हमने उनके लिए क्या किया? कुछ नहीं किया. हमने कंट्री के लिए क्या किया इज अ बिग क्वेश्चन मार्क. हमने सिर्फ गुस्सा किया, व्हाट डज दैट रिजल्ट.
1: अच्छा, लेकिन
0: अगर सारे इकट्ठे होकर, इफ वी हैव टू रियली डू समथिंग उसके लिए, क्योंकि टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज, इवन कुछ करने के लिए पावर चाहिए. अगर हम अंदर से हर्ट हैं, गुस्से में हैं, हम वीक हैं, वीक अंदर से वीक होकर सिर्फ शोर मचाकर हम कोई परिवर्तन ले आएंगे, विल नॉट रियली वर्क. एंड वी नीड टू रिमेम्बर, वो करना, वो उस तरह से करना, धीरे धीरे मेरी क्या बनते जा रहा
1: है,
0: हैबिट बनता जा रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो क्या होता है कि हम उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, वी नीड टू रिमेम्बर, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, डिटैच होकर देखें, एंड तुरंत अपने आप से पूछें, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. सो दैट लाइक आई वाज शेयरिंग एट द ब्रह्मा कुमारीज, हम लोग कलेक्टिव मेडिटेशन करते कि हम सब बैठकर, और ये तब नहीं सिर्फ कि अगर कुछ ऐसे इंसिडेंट होता, बट एवरी मंथ ऑल्सो. एक है कि एवरी डे हम शाम को जब मेडिटेशन करते, 6:30 to 7:30, हम दो बार मेडिटेशन करते हैं हर रोज दिन में. वन इज इन द मॉर्निंग, एंड ये हमने बहुत यू नो क्लियरली जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर जैसे ये किया है कि मॉर्निंग में जो मेडिटेशन है वो है अपने ऊपर काम करने का समय, अपनी मेहनत, अपने संस्कारों को परिवर्तन, और शाम को जब मेडिटेशन करते इट इज़ फॉर सर्विंग द वर्ल्ड. कि सुबह आपने मेडिटेशन किया, आपने अपने अंदर पावर्स भरी, शाम को आप मेडिटेशन करो एंड वो पावर्स जस्ट सेंड इट आउट टू द वर्ल्ड, जस्ट सेंड इट आउट. Now, when I came first to the Brahma Kumaris, I just didn't know how this works. ये कैसे होगा कि हम यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ create कर रहे हैं कुछ, and this is going out to the world. ये and for me it was a question mark कि इसका क्या फायदा हो सकता है कि हम यहाँ बैठे हैं, वो किसी और देश में है, वो तो अभी भी दर्द में ही है. एंड ये ऐसी चीज है जिसका कोई तुरंत प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं पता चलता कि यू नो जैसे we used to call this donation of peace and power. तो आई सेड धन डोनेट करो तो दिखाई देता, कपड़े डोनेट करो दिखाई देता, मतलब हमें ये नहीं कि फॉर एटलीस्ट आई कैन सी दैट आई एम गिविंग इट टू यू एंड यू आर टेकिंग इट एंड आई सी कि आपको वो मिला जो आपको चाहिए था, लेकिन पीस डोनेट करो वो आप तक पहुंच रहा है कि नहीं, आई वुड नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस. के बट नाउ व्हाइल आफ्टर डूइंग इट फॉर सो मेनी इयर्स आई हैव रियलाइज्ड इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. हाँ हमें उसका तुरंत वो नहीं पता चलेगा कि वो किस तक पहुंचा, क्या हुआ, लेकिन जब ये समझ में आ गया कि थॉट्स एनर्जी है और जो एक एक थॉट हम क्रिएट करते वो वाइब्रेशन है जो एनवायरनमेंट में फैलता है, पहले मुझे मिलता, मेरे आसपास जो है उनको मिलता, देन ग्रेजुअली आई अंडरस्टूड कि एक एक थॉट जो हम क्रिएट करते वो वाइब्रेशन है, इट डजंट स्टे इन, इट रेडिएट्स, इट वाइब्रेट्स इनटू द एनवायरनमेंट. एंड वो जिनके प्रति भी क्रिएट किया गया होगा, बिकॉज दैट्स व्हाट वी हैव सीन एवरी टाइम कि जो थॉट मैं आपके लिए क्रिएट करूंगी वो आप तक पहुंचेगा. तो जब हम मेडिटेशन करते हैं इट इज कॉन्शियसली क्रिएटिंग थॉट्स. यू नो वी डोंट रियलाइज, हम लोग आज सब बोल रहे हैं कि दुनिया में शांति होनी चाहिए, एवरीवन इज टॉकिंग कि दुनिया में शांति होनी चाहिए. कैसे आएगी? जब हम एक एक शांत रहेंगे तब ऑटोमेटिकली शांति के वाइब्रेशंस फैलेंगे, ऑटोमेटिकली शांति होगी. हम सब अशांत हैं और हम कहते हैं दुनिया में शांति होनी चाहिए. दुनिया मीन्स व्हाट? कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन द वर्ल्ड. हरेक जो हम हैं, हम सब की मन की स्थिति क्या है, कलेक्टिव सबकी मन की स्थिति को अगर हम लें वो दुनिया की स्थिति है. तो हम कहते हैं दुनिया में शांति हो तो मैं शांत हो जाऊंगा, यू नो दुनिया सब ठीक हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा. मैं शांत होंगे तो दुनिया में शांति आएगी. तो नाउ आई कांट वेट कि पूरी दुनिया में सभी 600 करोड़ लोग जब शांत हो जाए तो दुनिया शांत होगी, लेकिन एक एक करेगा, एक एक क्रिएट करेगा वो पीसफुल वाइब्रेशन तो दुनिया में तो आएगी, लेकिन सबसे पहले आई विल बी पीसफुल, माय फैमिली विल बी पीसफुल, वेयर आई एम वर्किंग विल बी पीसफुल. तो ये जो हम मेडिटेशन करते हैं वी डू इट एवरी इवनिंग 6:30 to 7:30, सर्विंग द वर्ल्ड, सेंडिंग आउट पावर्स ऑफ पीस, लव एंड पावर. And specifically, every third Sunday of the month, ये तो fixed है, all over the world, every third Sunday of the month, 6:30 to 7:30, सभी भाई बहने center पर आते, and it is called meditation for world peace. कि विश्व में शांति के लिए हम इकट्ठे मिलकर meditation करते.
1: In fact, you know, it's such a beautiful aspect कि it'll make me feel so good कि I'm doing it for the world. Yeah. यू नो अभी तक तो सब कुछ इवन प्रोग्राम में भी हम अपने लिए कर रहे थे, यू नो हर चीज हम पर फोकस हो रही थी, और कहीं ना कहीं वो जो ह्यूमन एलिमेंट ये होता है कि हम दुनिया के लिए क्या कर सकते हैं, और हर बार हमारे को लगता है कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम इतने बिजी हैं अपनी लाइफ में, कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, कुछ किसी का दर्द नहीं बांट सकते, कुछ नहीं कर सकते. So this gives me such a good feeling. Actually, we should all try to experience
0: and
1: it.
0: And in this case, it is कि जब आप कर रहे हैं किसी और के लिए, सबसे पहले किसको मिलता?
1: हाँ, खुद को मिलना
0: सबसे पहले. See, if I do something for you, it's for you. तो उसमें शायद हो सकता है मुझे कोई benefit नहीं, लेकिन इसमें सबसे पहले मुझे मिलता और फिर मेरे through औरों तक पहुंचता. एंड जब हम देते हैं दैट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल फीलिंग. लेना लेना सारा दिन ये तो बहुत ईजी है, लेकिन जो खुशी मिलती है जब हम देते हैं दिस इज समथिंग टू बी एक्सपीरियंस्ड. एब्सोल्युटली.
1: इन फैक्ट इट ऑलवेज हैपेंस, यू नो हम कुछ भी जब देते हैं हमें अच्छा लग रहा होता है.
0: यू नो गिफ्ट, जैसे गिफ्ट होता है, आई हैव टू आस्क मायसेल्फ गिफ्ट देने में ज्यादा अच्छा लगता या गिफ्ट लेने में? इट्स ऑलवेज द गिविंग, अ गिविंग ऑफ अ गिफ्ट. आप चूज करने जाएंगे, आप लेंगे, यू ऑलवेज सो हैप्पी बिकॉज गिविंग इज ह्यूमन नेचर. लेकिन वो हम अपने बेसिक नेचर को आज थोड़ा सा भूल गए हैं, एंड इंस्टेड ऑफ गिविंग हैप्पीनेस, गिविंग लव, गिविंग पीस, वी आर wanting happiness, asking for love, asking for peace. So let's experiment this meditation together.
1: In fact, Sister Shivani, हम जो बात कर रहे थे वो ये थी कि जो impact था आज इस पूरी बातचीत में, ये तो समझ में आया कि क्या process है, क्या कुछ कैसे होता है, जो जिसे हम हमारा जो पूरा जितनी देर हम टेलीविजन के आगे होते हैं, क्योंकि ये जो हमने एग्जांपल्स लिए उसमें भी तो यही हुआ, जितने दिन तक वो टीवी पर दिखते रहे, जितने दिन तक वो चर्चा में रहा, उतने दिन तक वो हम पे हावी रहा, उसके इमीडिएटली बाद हमें याद भी नहीं रहा,
0: कुछ और आ गया ना तब.
1: हाँ, सो इट मीन्स इट टुक ओवर ना.
0: सो दैट मीन्स मेरी अपनी क्रिएटिविटी क्या थी, इफ यू रियली फेल्ट फॉर व्हाट हैड हैपेंड, तो टीवी से वो हट भी गई न्यूज, आपकी फिर भी वो रहना ही चाहिए थी ना, वट एवर यू थॉट, but it's finished. So it's not really that you felt it, it is someone else was creating your emotions for you that time, and wo someone else changed the topic. Hamara bhi changed,
1: to hamari rationality khatam ho chuki hoti actually.
0: Wohi, that's what we said, hamari creativity ki kaun si thoughts create karni hai, choose karni hai. It's over.
1: To be understood ki shuruaat mein kya hota hai, there is a stage where we are stable, we are detached, humne jo pura process dekha, aur uske baad हमारा जो लोगों के ऊपर जो जजमेंटल होना कि ये ऐसा किसी भी चीज़ के लिए, एंड देन पूरी इमोशंस हमारे जो टेक ओवर करती है, ये तीन प्रोसेस हैं जब हम किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं बाहर ही किसी भी, और ये फिर मेरी हैबिट बनता जाता है जजमेंटल होना, और फाइनली फिर उस सिचुएशन को अपने ऊपर हावी होने देना. इनसे अब काम कैसे करना, हम टेलीविजन के प्रोग्राम से ही जुड़े हुए चीज़ें करेंगे, सो दैट क्योंकि आप इस प्रोग्राम से भी जुड़े हुए हैं तो उसको भी अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको कम ना होने दें. आपको जो समझ में आ रहा है, जो एक्सेप्ट, मतलब आप ब्लाइंड, बार बार हम ये कहते हैं कि ब्लाइंड फेथ ना रखकर, इसीलिए अनुभव की बात कही जाती है,
0: एक्सपेरिमेंट.
1: हाँ, कि आपका एक्सपेरिमेंट और फिर आपका एक्सपीरियंस जो होगा उसके साथ वो कैसा होगा वही आपको तय करवाएगा. आपके मन में कोई बात आ रही है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर आप हमें फोन भी कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज हमने मेडिटेशन के उस एस्पेक्ट को भी समझा जो कलेक्टिव होती है और जो सिर्फ मुझसे जुड़ी नहीं हो सकती, लोगों से भी जुड़ सकती है, विश्व से जुड़ सकती है. तो आज सिस्टर शिवानी चलते चलते चाहेंगे कि थोड़ा सा अनुभव वो करें.
0: आज दिन तक हमने मेडिटेशन किया, आज उसमें एक नया एस्पेक्ट देखते कि हाउ आई कैन क्रिएट वाइब्रेशंस ऑफ पीस एंड सेंड इट आउट टू द वर्ल्ड. तो इसमें कोई हमें स्पेसिफिकली लोगों के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन आई क्रिएट वो शांति की संकल्प, वो अनुभूति, एंड देन आई सेंड इट आउट टू द वर्ल्ड. डोंट सिट एंड थिंक कि वो किस तक पहुँचेगा, कहाँ पहुँचेगा, नहीं, जस्ट सेंड इट आउट विद अ प्योर फीलिंग एंड अ प्योर इंटेंशन एंड इट विल रीच आउट टू देम. Let's sit comfortably. बाहर की रोजमर्रा की बातों से अपनी बुद्धि को हटाते हुए अपने ऊपर लेकर आते हैं. I, that powerful being, जो हर संकल्प क्रिएट करता है. I am the creator of every thought. I am a peaceful being. Shanti mera apna swabhav, meri apni nature hai. Ye shanti ki vibrations, ye shanti ki shakti mujhse nikal kar sare vishv tak pahunch rahi hai. Dekhne ka prayas kare. Vibrations of peace. It's like a laser beam. Mujhse nikal, sare vishv tak pahunch rahi hai. Vishv ki ek ek atma tak pahunch rahi hai. Om Shanti.
1: Om Shanti. Thank you so much. Ab aapse bhi vida lenge. लेकिन इसी उम्मीद के साथ कि आने वाली कड़ियों में बहुत सी और बातें हम समझ पाएंगे. ओम शांति.

0: आचार्य विनोबा भावे की जीवनी पर आधारित प्रेम पंथ अहिंसा का इस रेडियो धारावाहिक में आप सबका स्वागत है। आज हम सुनेंगे प्रवीणा दीदी इनसे गीताई और विनोबा के बाद ब्रह्म विद्या मंदिर की स्थिति, इस विषय पर उनका साक्षात्कार।
1: प्रेम पंथ अहिंसा का।
2: मैं प्रवीणा देसाई, मेरी स्कूल बम्बई में थी और वो गांधीयन स्कूल थी, तो इसलिए मेरे सब शिक्षक जो थे वो बहुत आदर्शवादी कैरेक्टर वाले और खादी धारी ऐसे गांधी के डिसाइपल्स थे। तो हमने गांधी जी को भी देखा था, काम भी किया था गांधी जी की संस्थाओं में, पर हम 10 साल के थे तब गांधी जी का तो परलोक गमन हो गया, तो इसलिए उसके बाद हम खोज में थे कि हमको गांधीयन लाइन्स कहाँ से मिलेगी। तो जब हम कॉलेज में पढ़ते, हम फर्स्ट ईयर में थे, तब से विनोबा जी का बोधान यज्ञ शुरू हो गया था और एक मैगजीन गुजराती में निकलती थी तब, भूमिपुत्र करके, दो पन्ने की। तो हमारे एक प्रोफेसर ने हमको उसको दिया और हमने कॉलेज में ही सर्वोदय मंडल शुरू कर दिया था। तो जितने 6 साल हम बम्बई में पढ़े, हम विनोबा जी का काम करते रहे। फिर जब कॉलेज छोड़ दिया पढ़ करके, विनोबा जी के पास आ गए। अभी तो करीब 58 साल हो गए विनोबा जी के पास आ करके, उसमें से 21 साल विनोबा जी जिंदा थे और 35-36 साल विनोबा जी के जाने के बाद उनका काम कर रहे हैं। ऐसे विनोबा जी ने 71 में गीताई मिशन शुरू किया और मुझे बुला करके कहा कि तुमको यह काम करना है। तो तब से करीब 50 साल होने आए, 46-47 साल हो गए हम लोग वो काम कर रहे हैं। और हमने हर साल 1 लाख गीताई, जो विनोबा ने संस्कृत में से मराठी बनाई है, वो मराठी जनता में पहुँचाते हैं ऑल ओवर इंडिया, जहाँ भी मराठी सर्कल्स है बाहर भी। और गीता प्रवचन जो विनोबा जी की है वो तो 26 भाषा में उसका अनुवाद हुआ है, तो वो हर प्रांत की 10,000, एक एक प्रांत की, कोई भी एक प्रांत की 10,000 हर साल, ऐसा हम हमारा टारगेट है पहुंचाना, फिर उस पर शिविर सम्मेलन करना, उस पर मंडल चलाना, स्वाध्याय ग्रुप चलाना, और गीता के मुताबिक जीने वाले बच्चे कैसे तैयार हो। तो कॉलेज के जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं उनमें हम जोनल कैंप्स करते हैं 7-7 दिन के, कि हाउ टू लिव द गीता इन एक्चुअल लाइफ। तो उस मुताबिक हम फिर उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हो जाते हैं, एमटेक, एमएलएलबी, एमकॉम, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कंप्यूटर एक्सपर्ट्स, वो सब फिर हमारे पास आकर के सीखते हैं वो। तो उसका रेसिडेंशियल एक यूथ सेंटर भी हमने खोला है। तो गीताई मिशन इन इटसेल्फ काफ़ी कुछ विनोबा जी के गीताई के काम को प्रचार करने के बारे में, और भी जितनी संस्थाएं देश भर में गीता प्रचार कर रही है उनके साथ भी समन्वय साधते हुए हर 3 साल में किसी कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें 30-एक संस्थाएं हमसे जुड़ती हैं एक कॉन्फ्रेंस में, और फिर हम मिलकर के एक टोटल प्रोग्राम बनाते हैं कि कैसे क्या करना है। हमारा टारगेट ऐसा है कि हमको राष्ट्र की सेवा करने वाले त्यागी और बलिदानी युवक मिलने चाहिए। तो हम बच्चों की पाठ्यता परीक्षाएं लेते हैं, हर साल 2 लाख से अधिक विद्यार्थी उस परीक्षा में बैठते हैं महाराष्ट्र भर में, गोवा इंक्लूडिंग। उसके अलावा हम यूथ ईयर्स में या ऐसे ईयर्स में उनको स्पेशल कुछ कुछ देते हैं कि पूरी गीता पाठ करो तो हम 500 रुपये का बख्शिश देंगे, मराठी में पाठ करो तो 250 रुपये का देंगे, ऐसा सब अलग अलग भाषाओं में गीता के अनुवाद हमने करवाए हैं तो हर प्रांत का बच्चा पढ़ सके। फिर हमारी एक बहुत ऐसी योजना है कि विनोबा जी ने कहा था कि पूरे देश दुनिया के सारे लिटरेचर को उन्होंने पढ़ा, 27 भाषाएँ पढ़ करके ओरिजिनल हिब्रू में बाइबल पढ़ा, ओरिजिनल अरबी भाषा में कुरान पढ़ा, ऐसा बाबा ने किया, मेहनत किया, रिसर्च किया। तो कहते हैं कि सब पढ़ने के बाद भी मुझे लगता है कि एक माँ अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा संस्कार तब दे सके जब उसको गीता के प्रिंसिपल्स में वेलवर्स्ड किया जाए, और वो हम भाष्यकारों ने, पुरुष भाष्यकारों ने एक ने भी उस पर मेहनत नहीं की है। तो वो जो लैक्यूना रह गया है उसको पूरा करने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो हमने बहनों के लिए ऐसे कथा गीता जन मंदिर नाम की किताब बनाई है 18 अध्यायों की, कि जिसमें विनोबा जी के प्रिंसिपल्स, उस पर 6 कहानियाँ, जैसे पहले अध्याय कहता है कि आप अर्जुन के जैसे सरल हृदय वाले बनो, तो उस पर 6 कहानियाँ कि अपने देश में कौन 6 लीडर सचमुच सरल हृदय वाले थे फिर भी देश का इतनी सेवा की। फिर दूसरा अध्याय कहता है कि आप संयम में अपनी इंद्रियों पर काबू रख करके कैसे जियो, तो उस पर 6 कहानियाँ अलग अलग देशों की, अलग अलग प्रोफेशंस की, अलग अलग धर्मों की ऐसे। तो क्या बच्चों को माइंड भी वाइड होता जाए और समझते भी जाए कि कोई हिंदुस्तान में ही या हिंदू धर्म में ही अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं, हर धर्म में, हर फैकल्टी में, हर प्रोफेशन में भी अच्छे लोग हैं, कोई आश्रम जाने से या संन्यास लेने से ही अच्छे होंगे, ऐसा नहीं, ऐसा उनको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिलता जाए बच्चों को, और माए इन कहानी के द्वारा उन बच्चों में उन गुणों को वर्च्यूज को इनकल्केट कर सके। तो वो अभी तक हमारी 7 भाषाओं में हो गई किताब। हर साल हमको उसके लिए हर साल खर्चा करना पड़ता है, और 10,000 कॉपियां छापते हैं तो उनका फिर प्रचार करना पड़ता है, दे शुड गो आउट ऑफ अवर गोडाउन। तो इसलिए हर साल एक भाषा में करते हैं। ऐसे 7 भाषा के हो गए हैं, पर हिंदुस्तान की 26 भाषा में हम करेंगे। इस साल मणिपुर की छाप रहे हैं। माओं को हम वो देंगे ताकि बच्चों को आप तैयार करो करके। तो जगत पे कुछ लोग ऐसे होने चाहिए कि जो बदलती सिचुएशंस में हमारे जो ओरिजिनल प्रिंसिपल्स है, मानवता के जो ओरिजिनल एथिक्स है, मॉरल्स है, उनको आज की सिचुएशन में कैसे अप्लाई करते हुए जी सके आज के यंगस्टर्स। उसके लिए वो त्याग बलिदान करके थोड़ा पैसा भले कम कमाने मिले, फिर भी हमको राष्ट्र के लिए कुछ करना है, इस अपील के साथ। तो हमने 4 टॉपिक्स लिए हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग, अवेयरनेस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्करेंस ऑफ ऑल रिलीजियंस यानी भावनात्मक एकता, और सोशल एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑफ इंडिया। इन 4 पर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं और उस पर बच्चों को कोर्सेज करवा करके निकालते हैं। तो ऐसे ओवर 30 ईयर्स हमारे पास 300 लड़के ऐसे हुए हैं कि जो हमारी तरह सन्यासी भी बन गए, और बहुत सिंपल रह करके सन्यास का कोई बहुत बड़ा दम्भ लिए बिना, भगवे कपड़े पहने बिना, तीले टपके किए बिना, या अपने को हम पर्टिकुलरली हिंदू ही है ऐसा पैरोशियल स्टैंड लिए बिना, हम मानव है और मानव की सेवा करते हैं ऐसा एक उदार मन रख करके काम करने वाले तरुण हम तैयार कर रहे हैं। तो ये 4 हमारे मुख्य टॉपिक, कैरेक्टर बिल्डिंग, अवेयरनेस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, भावनात्मक एकता, और स्पिरिचुअल एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, वो देश दुनिया में कैसे फैले। क्योंकि हमारी कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो विदेशों को नहीं पता है, जिसमें हम तो हजारों सालों से जी रहे हैं। ऐसी चीज़ें जैसे अपने बहनों के जो योनि रक्षा है, कौमार्य की रक्षा करने के लिए अपनी बहनों को जितना विचार है, उतना विदेशों की बहनों को नहीं है। या फैमिली कितना स्टर्डी होना चाहिए, मनुष्य का मुख्य सुख पति पत्नी और बच्चे सुख से रहे उसमें है। उसमें अगर इनफाइडेलिटी आ गई तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, चाहे कितने पैसे हो, चाहे कितना प्रेस्टीज हो। तो ये कुछ परिवार है, गांव है, ग्रामोद्योग है, गाय है, स्त्री की मातृत्व है, वात्सल्य रक्षा, ये सबको लेकर के हमने 18 पॉइंट एक प्रोग्राम बनाया है। जैसे नदी का पानी स्वच्छ होना चाहिए, जल, जंगल, जमीन, सूर्य की उपासना होनी चाहिए, उसमें इंडिया एक्सेल्स इन सो मेनी वेज। सूर्य उपासना के इतने ज्यादा मैथमेटिक्स और साइंसेस हमने डेवलप किए हैं, स्पेशली जैन धर्म ने, तो वो सब भी दुनिया में पहुंचे। फिर हर धर्म में ब्रह्मचारी लोग रहते हैं, परंतु उनको ब्रह्मचारी यानी खाली शादी नहीं करना या स्त्रियों के साथ संभोग में रहना, इतना ही पता है। तो हमारे यहाँ उसका पूरा साइकोलॉजिकल, नाड़ी तंत्र, योग तंत्र, ये सबको लेकर के एकदम आप टॉप मोस्ट गॉड रियलाइजेशन तक कैसे पहुंच सको जस्ट बाय नॉट गेटिंग मैरिड, उसका पूरा यहाँ पतंजलि योग शास्त्र है। ऐसी कई रेयर चीजें हैं जो हिंदुस्तान ने ओवर 30,000 ईयर्स तैयार की है और जिसके बारे में दुनिया अभी अभी सीख रही है। जैसे इकोलॉजी का साइंस है कि भाई पृथ्वी और ब्रह्मांड का वातावरण, सूर्य, चंद्र, नदी, पहाड़ सब आपको मदद कर रहे हैं ह्यूमैनिटी को, तो प्रिजर्व देम। ये अभी उन्होंने 50 साल 50 साल से ढूंढा है, मेरे हमारे गीता है 5,000 साल पहले भी कहा है कि इनको, इन देवताओं को खुश नहीं रखोगे तो आपको वो कैसे खुश रखेंगे। दे ऑल्सो नीड लव लाइक यू लव फ्रॉम देम, लव एंड सस्टेनेंस एवरीबडी नीड्स। पेड़ को भी चाहिए, गाय को भी चाहिए, पशु को चाहिए, पंखी को चाहिए, चींटी को चाहिए, सबको चाहिए। तो उसकी तरफ मानव हृदय, नॉट बिकॉज दे आर यूजफुल टू अस बट बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ अवर को लिविंग, उनकी तरफ अपन उदार और अच्छे कैसे हो। उसके बारे में जो इकोलॉजी है वो हिंदुस्तान के पास है, उन लोगों के पास नहीं है। वो पृथ्वी को, पेड़ को, सबको जड़ मानते हैं। हम कहते हैं गैया इज लिविंग, अर्थ इज लिविंग। तो वो जो कॉन्सेप्ट है सारा, वो दुनिया भर में फैले तब तो फिर हमको यहाँ आंदोलन नहीं करने पड़े। जितने ही विदेशी आक्रमण आते हैं तो हमारी गाय खत्म हो गई, हमारे जंगल खत्म हो गए, हमारी शुद्ध हवा खत्म हो गई, शुद्ध पानी खत्म हो गया, पानियों को सब पाइपलाइन से ले जाएंगे और फैक्ट्री को देंगे तो किसान को नहीं मिलेगा। ऐसे कई प्रॉब्लम्स आज के विकासवाद में आ रहे हैं। तो क्योंकि हम गांधी विनोबा के विकासवाद को समझे हैं, हम एक उल्टा विकासवाद कैसे निर्माण हो देश में उसके बारे में बहुत कार्यरत। विनोबा जी का सबसे बड़ा विचार ये हमको लगा कि उन्होंने कहा कि आप काम खूब करो पर अहंकार बिल्कुल नहीं आना चाहिए, बहुत नम्र रहो। तो विनोबा जी कभी टीवी पर गए नहीं, रेडियो पर गए नहीं, टाल देंगे ऐसा। हमको कुछ बहुत पब्लिक में आने का या रिपोर्टिंग करने का बहुत शौक नहीं है, सो पीपल डोंट नो व्हाट वी आर डूइंग, बट साइलेंटली एंड अंडरग्राउंड हमारा ये सब चलता रहता है, धीरे धीरे धीरे, स्लो एंड स्टेडी, वेदर वी विन द रेस और नॉट वी डोंट नो, कैसा गति से हम जाते हैं। हमारे पास बहुत फंड्स नहीं है, बहुत कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई रेडियो टीवी या कंप्यूटर या व्हाट्सएप या ये सब नहीं है हमारे पास, सादा जेरोक्स मशीन भी नहीं है, टाइपराइटर भी नहीं है, पर हम सादगी से जितना काम हो सकता है उतना करते हैं, बिना पैसा के और जीवन और समय दे करके, बाय अवर ओन 10 फिंगर्स हम जो कर सकते हैं करते हैं। पत्र भी यथासंभव हम टाइप नहीं भेजते, हाथ से लिखे, 100-200 लोगों को ही भेजना हो हम खुद लिखते हैं, हार्ट टू हार्ट जाना हम पसंद करते हैं, मशीन के द्वारा जाना या कंप्यूटर के द्वारा जाना है, वेबसाइट से जाना नहीं पसंद करते हैं। हमारे पास वर्क ऑल ओवर इंडिया हमारा नेटवर्क है, जिसमें 40-50 कार्यकर्ता बिना कुछ पैसा लिए हमसे वॉलंटरीली काम करते हैं। देखो बाबा का तो एक ही विचार है, सर्व उदय, सबकी जीत होनी चाहिए, किसी की हार क्यों हो, क्यों दो व्यक्तियां लड़े, सब लोग सगे भाई बहन की तरह क्यों नहीं जिए, फैमिली में जैसे हम जीते हैं, ये बाबा का मुख्य उद्देश्य था, सर्व उदय। तो एक तो हमारे पास सर्व का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि भाई सर्व व्हाट डू यू मीन, कल सांप आ जाएगा तो उसको मारेंगे कि नहीं मारेंगे, कल मच्छर यहाँ बैठेगा तो उसको मारेंगे कि नहीं मारेंगे, सर्व यानी क्या, सर्व यानी एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी, उसमें जल जंगल जमीन एटमोसफियर सब आ गया, पानी पशु पंखी टोटल ब्रह्मांड आ गया, भूमा। बाबा कहते हैं यो भाई भूमा तत् सुखम न अल्पे सुखम अस्ति, आप छोटे बन जाओ तो कहीं सुख नहीं है, आप सबके साथ एक रूप हो जाओ तो बहुत बहुत सुख है। तो वो चीज जो है सर्व का कॉन्सेप्ट, उदय का कॉन्सेप्ट, कि भाई मेरी जीत होगी तो तुमको रोना पड़ेगा, ऐसा नहीं, तुमसे छुपा करके मैं कुछ आगे चले जाऊं, तुमको पीछे करके मैं आगे चले जाऊं, वो सब एटीट्यूड नहीं होने चाहिए, पेरोशियल एटीट्यूड नहीं होने चाहिए, द्वैत नहीं होना चाहिए आपस में, प्रेम से सब लोग जियो। तो ये प्रेम का कॉन्सेप्ट, उदय का कॉन्सेप्ट, उसमें नॉन वायलेंस आ जाता है, आर यूनिटी ऑफ एवरीबॉडी, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स को लेकर अगर जीवन को बनाना है तो वो थियोरेटिकल नहीं रहता, फिर प्रैक्टिकल में आ जाना पड़ता है। तो उसमें विनोबा जी का ये कहना था कि श्रम निष्ठा मुख्य चीज है, मनुष्य इसलिए दूसरों से अलग होना चाहता है कि वो श्रम नहीं करना चाहता, श्रम करने वाले कुछ नीचे है, वो तो गंदा काम करने वाले, वो तो झाड़ू निकालने वाले, वो तो संडा साफ करने वाले, वो तो पाइपलाइन ठीक करने वाले, वो तो अंडरग्राउंड लेबरर्स माइंस में काम करने वाले, हम डिग्री वाले तो हम कुछ बड़े, किस लिए कि हम गंदे काम नहीं करते, हमारे गंदे काम दूसरों से करवाते, तो ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, ऐसा बाबा का कहना था। गंदा तो आप करते हैं, काम उनको करना पड़ता है गंदा, तो यू शुड बी ओब्लाइज्ड बाय देम, आप ग्रेटफुल होने चाहिए, उसके बदले उनको हल्का गिनते हो, हाईब्रोड रहते हो, तो वो नहीं बाबा को चाहिए था। इसलिए यहाँ जितनी बहनें सब बहुत बड़े बड़े घर से आई हैं, बहुत बहुत पढ़ लिख के आई है, सबके पास बहुत बड़ा बैकग्राउंड वेल्थ का और डिग्रीज का भी था, फिर भी सोशल वर्क का भी था, सब सोशल वर्क करके आई है यहाँ, तो इतनी सारी लीडर बहनें इकट्ठा होकर के आई है, पर आप किसी को मिलेंगे तो लगेगा नहीं कि कुछ भी है, वो ऑर्डिनरी से भी कम लगेगी आपको, इतना सादगी संयम, सब जीने की बात है, बोलने की बात। भूदान में भी थी और मैं आसाम में 10 साल रह करके साधना किया, तब भी वहाँ के ग्रामदानी गांव 1000 थे, वहाँ पर हम लोग काम करते थे, ग्रामदानी गांव के सब्सटेंशिएशन के लिए भी एक संस्था बनी है अभी तो, सर्वसेवा फार्म बन के, उसका भी काम हमने किया। जितना गांधी विनोबा का फैमिली है ऑल ओवर इंडिया, गांधी जी के 21 रचनात्मक काम थे, विनोबा जी के 12 थिंकिंग काम थे, इंटेलेक्चुअल काम थे, तो उन सारे 32 कामों को लेकर के हम लोग सब एक फैमिली है, इट्स अ बिग इंडियन फैमिली, उसको विदेश तक एक्सटेंड करने का भी हमारा, क्योंकि आज के पूरी दुनिया को नष्ट करने वाले जितने प्रॉब्लम्स है, जैसे टोटल डिस्ट्रक्शन, 6000 बार पूरी पृथ्वी डूब जाए, राख हो जाए, इतना आर्मामेंट्स इकट्ठा हो गए हैं देश दुनिया में, 78% ऑफ द टोटल नेशनल इनकम ऑफ ऑल नेशंस इज स्पेंट ऑन डिफेंस, जो कि लड़ने वाले कोई नहीं है फिर भी आर्मामेंट्स इकट्ठा करते जाते हैं, तो टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ द होल यूनिवर्स इज अ प्रॉब्लम, ओवर एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे बच्चों के लिए नेक्स्ट 2 generations के लिए ना जंगल बचेगा, ना स्वच्छ पानी बचेगा, ना स्वच्छ हवा बचेगी, तो कैसे जिएगा मानवता, तो दैट्स अ प्रॉब्लम, पॉल्यूशन इज अ प्रॉब्लम, तो ऐसे सारे आपस में एक दूसरे का विश्वास नहीं रहा, फैमिली टूट रहे हैं, डाइवोर्सेज बहुत हो रहे हैं पति पत्नी के बीच में, तो क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस, क्राइसिस ऑफ कैरेक्टर, क्राइसिस ऑफ को लिविंग, ये सब भी प्रॉब्लम्स, ऐसे 21 प्रॉब्लम्स हमने लोकेट किए हैं, और इन पर देश और दुनिया में कई वाइज मैन, ट्रांसनेशनल, ट्रांस रिलीजियन, ट्रांस प्रोफेशन, ट्रांस लैंग्वेज, ऐसे लोग हैं कि जो बहुत सोचते हैं इन सारे विषयों पर. तो उन सबके विचार एक साथ हम लाए हैं, उनको कोऑर्डिनेट करके आज की पीढ़ी को दें, जो कोई फैकल्टी नहीं कर रही है. डॉक्टरों को नहीं पता कि डॉक्टर के आलम में आज कितने गांधीयन डॉक्टर्स होंगे या कितने आइंस्टाइन होंगे. फिजिशियंस को नहीं पता है, इकोलॉजिस्ट को नहीं पता है कि आज शूमाकर कितने दुनिया में काम कर रहे हैं. तो वो सब रिसर्च करके इकट्ठा ला करके टू मेक अ बिग फैमिली ऑफ सर्वोदय, ऐसा हमारा ध्येय है. आफ्टर ऑल, आप जितने भी साइंटिफिक रिसर्चेस करेंगे, जितने भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस करेंगे, उनका अप्लाई कौन करेगा? मनुष्य करेगा ना. तो मनुष्य का हृदय अगर दुष्ट बन गया तो दुष्टता की तरफ जाएगी सारी टेक्नोलॉजी. मनुष्य का हृदय अगर अपने कैरेक्टर की तरफ लिया तो सारी टेक्नोलॉजी उसकी सेवा करेगी. एवरी प्रोग्रेस हैज टू बी ऑपरेटेड बाय मैन, और मैन ही अगर अंदर से टूट गया तो मैन मेकिंग एजुकेशन नहीं होगा. इसलिए एजुकेशन शुड बी ए मैन मेकिंग एजुकेशन, ये हमारा मोटो है.
0: अभी आपने सुना आचार्य विनोबा भावे की जीवनी पर आधारित प्रेम पंथ अहिंसा का इस रेडियो धारावाहिक में प्रवीणा दीदी का साक्षात्कार.
3: आचार्य विनोबा भावे की जीवनी पर आधारित प्रेम पंथ अहिंसा का इस रेडियो धारावाहिक की परिकल्पना है श्री के वी राव, लेखन डॉक्टर वर्षा पुनवटकर, समन्वयक श्री अमोल देशमुख, निर्देशन श्री नितिन लोहकरी. विशेष आभार श्री गौतम भाई बजाज, कालिंदी दीदी, परमधाम आश्रम पवनार. इसमें सहभागी कलावंत, विनोबाजी की आवाज़ डॉक्टर इसरार गुनेश, निवेदक सचिन घोड़े, अन्य सहभागी कलावंत वैशाली जोगे, चांगुना भोसले, संदीप देशमुख, राहुल ठाकरे, गौरव भोयर, अभिलाष घीमे, कैनिश देशमुख, प्रसन्न पुनवटकर, पीयूष धामेचा, मधुरा पवार, मुर्तजा अली, पूर्वा पनपालिया, सिद्धांत हस्ते, नितिन लोहकरे, अमोल देशमुख, नितिन घोड़े, सुहास इंगले, सतीश खांडेकर, मिहिर धर्माधिकारी, मयूर भिसेकर, संपदा

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। इसका सही जवाब है मोहन किशोर नामदास। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा और महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

भारतीय ज्ञान परंपरा के आकाश में कुछ ऐसे नक्षत्र उदित हुए हैं जिनका प्रकाश समय की सीमाओं को लांघकर पीढ़ियों का मार्ग आलोकित करता रहा है। आयुर्वेद के पुनरुत्थान से जुड़े एक ऐसे ही महान व्यक्तित्व का नाम है डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति। जब परंपरा और आधुनिकता के बीच संवाद की आवश्यकता थी, तब उन्होंने आयुर्वेद की सनातन चेतना को नए युग की धड़कनों से जोड़ा। उनके लिए आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति नहीं थी, बल्कि वो आयुर्वेद को भारतीय संस्कृति की जीवंत आत्मा मानते थे। उसे जीवन को संतुलन, स्वास्थ्य और समरसता प्रदान करने वाली एक संपूर्ण दृष्टि मानते थे। ज्ञान उनकी साधना था, सेवा उनका धर्म और आयुर्वेद का उत्थान उनका संकल्प। वो आधुनिक भारत में आयुर्वेद चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के सबसे प्रमुख प्रणेताओं में से एक थे। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति का जन्म 3 मार्च सन 1880 को आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के माधोवरम गांव में एक कृषक परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम अचंता रमैया था। परिवार के आध्यात्मिक वातावरण ने उनके व्यक्तित्व की नींव रखी। पिता की प्रेरणा से ही उन्होंने वेद पुराण और संस्कृत भाषा का गहन अध्ययन किया। उनके बाल्यकाल पर उनके दादा सुब्बा रायडू और प्रसिद्ध समाज सुधारक कुंदुकुरी वीरेश लिंगम का गहरा प्रभाव पड़ा। इन दोनों विभूतियों के सानिध्य ने उनके भीतर ज्ञान और समाज सेवा के बीज बोए। इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। उनकी माताजी गंभीर रूप से बीमार हुईं। उपचार के दौरान अचंता लक्ष्मीपति की भेंट राजमहेंद्रम के एक प्रसिद्ध वैद्य डॉक्टर सीतारमैया से हुई। ये केवल एक वैद्य से भेंट नहीं थी, बल्कि आयुर्वेद से उनका पहला सटीक परिचय था। डॉक्टर सीतारमैया ने उन्हें आयुर्वेद के व्यावहारिक सूत्रों से परिचित करवाया और उनके मन में इस भारतीय चिकित्सा परंपरा के प्रति आदर भाव जागृत किया। इस तरह भारत की इस अमूल्य विरासत को नई प्रतिष्ठा दिलवाने का संकल्प उनके मन में जागा।

ये वो समय था जब भारत में आधुनिक चिकित्सा शिक्षा का प्रभाव बढ़ रहा था। अचंता लक्ष्मीपति ने आधुनिक चिकित्सा पद्धति को समझने का निश्चय किया। सन 1904 में उन्होंने बीए की शिक्षा पूरी की तथा छात्रवृत्ति प्राप्त कर मद्रास मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया। इस तरह सन 1909 में उन्होंने एलोपैथी चिकित्सा में प्रामाणिक डिग्री हासिल की। सन 1910 में उन्होंने मद्रास में अपनी प्रैक्टिस शुरू की और वो वेंकटगिरी के राजा जैसे संभ्रांत वर्ग के पारिवारिक चिकित्सक बने। लेकिन सन 1914 में ब्रिटिश सरकार द्वारा मद्रास मेडिकल रजिस्ट्रेशन एक्ट पारित किया गया, जिसका उद्देश्य आयुर्वेद को गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति घोषित करना था। इसके विरोध में डॉक्टर लक्ष्मीपति ने अपना नाम एलोपैथी के मेडिकल रजिस्टर में दर्ज करवाने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश सरकार के इस कदम को उन्होंने केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं माना, उन्होंने इसे भारतीय ज्ञान परंपरा के सम्मान का प्रश्न समझा। ये उनके पेशेवर जीवन के लिए जोखिमपूर्ण समय था, लेकिन इसी समय उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का प्रवेश हुआ, वैद्य रत्न पंडित देवी गोपाल चारलू। वो मद्रास के सुप्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान थे जिन्होंने अचंता लक्ष्मीपति की प्रतिभा को पहचाना तथा अपने संरक्षण में उन्हें आयुर्वेद के गहन अध्ययन का अवसर दिया। सन 1914 से 1919 तक अचंता लक्ष्मीपति ने उनसे गहन ज्ञान प्राप्त किया। सन 1919 में विश्व स्पेनिश फ्लू नामक घातक महामारी की चपेट में आ गया। इस महामारी ने दुनिया की एक तिहाई आबादी को अपनी चपेट में ले लिया था। इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण ये महामारी फैली थी। ऐसे कठिन समय में डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति ने आयुर्वेदिक उपचार के माध्यम से हजारों रोगियों को राहत पहुंचाई। इस अनुभव ने उनके इस विश्वास को और भी दृढ़ कर दिया कि भारतीय चिकित्सा पद्धति केवल अतीत की धरोहर नहीं है, बल्कि वर्तमान और भविष्य की आवश्यकता है। इसके बाद उन्होंने एलोपैथी इलाज पूरी तरह से छोड़ दिया और स्वयं को आयुर्वेद के लिए समर्पित कर दिया। सन 1920 में उनके गुरु वैद्य रत्न पंडित देवी गोपाल चारलू का निधन हो गया और गुरु का दायित्व शिष्य के कंधों पर आ गया। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति को मद्रास आयुर्वेदिक कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। सन 1920 से 1928 तक उन्होंने इस संस्था को केवल एक शिक्षण केंद्र नहीं, बल्कि उसे आयुर्वेदिक चेतना का केंद्र बिंदु बना दिया। इस कॉलेज को चलाने के लिए मुंगला के राजा ने भी बड़ी वित्तीय सहायता प्रदान की थी। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति स्वास्थ्य को जीवन पद्धति का विषय मानते थे। यही कारण है कि उन्होंने सन 1926 में मद्रास के पास स्थित आवड़ी में आरोग्य आश्रम समिति की स्थापना की। ये केवल एक आश्रम नहीं था, बल्कि स्वास्थ्य और प्रकृति के समन्वय का प्रयोग था। एक ऐसा स्वास्थ्य ग्राम जहां उपचार के साथ साथ जीवन जीने की कला सिखाई जाती थी। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति ने युवा वैज्ञानिक डॉक्टर यल्ला प्रगदा सुब्बाराव की प्रतिभा को पहचान कर उनके प्रारंभिक शोध कार्यों को प्रोत्साहित किया और उनकी उच्च शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया, जिन्हें चमत्कारिक औषधियों का जनक माना जाता है। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति पर रमण महर्षि के आध्यात्मिक विचारों का गहरा प्रभाव था, जिन्होंने उनके चिंतन और विचारधारा को एक सार्थक दिशा प्रदान की। वो गांधी जी के विचारों से भी अत्यधिक प्रभावित थे तथा स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई।

सन 1933 में डॉक्टर अजंता लक्ष्मीपति की सेवाओं और नेतृत्व क्षमता को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई। बीकानेर में आयोजित ऑल इंडिया आयुर्वेद महासम्मेलन में उन्हें अध्यक्ष चुना गया। धीरे धीरे उनकी ख्याति पूरे देश में फैल रही थी। लोग उन्हें केवल एक चिकित्सक के रूप में नहीं बल्कि आयुर्वेद का पुनरुत्थान करने वाले मनीषी के रूप में देख रहे थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी यात्रा अभी शेष थी, एक यात्रा जो उन्हें गांधी जी के और निकट ले गई, एक यात्रा जिसने गांव गांव जाकर स्वास्थ्य संदेश पहुंचाया। सन 1938 का साल भारत की स्वाधीनता के स्वप्न से आंदोलित साल था। महात्मा गांधी ग्रामोदय और स्वावलंबन के विचार को जन जन तक पहुंचा रहे थे। इसी समय डॉक्टर अजंता लक्ष्मीपति ने एक अभिनव अभियान आरंभ किया जिसका नाम था आरोग्य यात्रा। वो लगभग 100 चिकित्सकों के साथ पैदल चलते हुए गांव गांव पहुंचे। उन्होंने लोगों को स्वच्छता, संतुलित जीवन शैली और आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सिद्धांतों का महत्व समझाया। वो पंच शुद्धि प्रणालिका के 5 नियमों का संदेश लिए आगे बढ़ते रहे। अपने इस अभियान में उन्होंने प्रत्येक गांव में कम से कम 1 एकड़ भूमि पर औषधीय पौधों का उद्यान विकसित करने हेतु लोगों को प्रेरित किया। उनका मानना था कि स्वास्थ्य अस्पतालों से नहीं बनता, वो विकसित होता है स्वच्छ विचारों, संतुलित आहार और प्रकृति के सानिध्य में। डॉक्टर लक्ष्मीपति के इन प्रयासों से गांधी जी अत्यंत प्रभावित हुए। सन 1939 में गांधी जी ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से सेवाग्राम आश्रम आने का निमंत्रण दिया। वर्धा का सेवाग्राम आश्रम उस समय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र था। सेवाग्राम पहुंचकर उन्होंने केवल एक चिकित्सक की भूमिका नहीं निभाई बल्कि उन्होंने स्वास्थ्य और ग्राम विकास के गांधीवादी स्वप्न को मूर्त रूप देने में सहयोग दिया। गांधी जी ने उन्हें आश्रम में एक विशाल उद्यान विकसित करने का दायित्व सौंपा। इस उद्यान का उद्देश्य केवल औषधियां उगाना नहीं था बल्कि ये सिद्ध करना था कि भारत के गांव अपने स्वास्थ्य की रक्षा स्वयं कर सकते हैं। डॉक्टर लक्ष्मीपति की धर्मपत्नी श्रीमती रुक्मणी लक्ष्मीपति भी राष्ट्र सेवा को समर्पित रहीं। वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थीं और सन 1946 में मद्रास प्रांत की सरकार में वो सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री बनी। इस तरह पति पत्नी ने साथ मिलकर भारतीय चिकित्सा के विकास की एक नई धारा प्रवाहित की। सन 1947 में भारत की आजादी के बाद भी वो राष्ट्र सेवा को समर्पित रहे। गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर वो समाज सुधार के कार्य में भी निरंतर संलग्न रहे। डॉक्टर लक्ष्मीपति अंतरजातीय विवाह के प्रबल पक्षधर थे। यही कारण है कि उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अपनी जाति से बाहर एक गैर ब्राह्मण युवक से किया। इसके साथ ही वो पृथक आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना के भी पक्षधर थे। सन 1960 में भारत सरकार ने उन्हें योजना आयोग में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का राष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त किया जहां उन्होंने रोग प्रतिरोधक चिकित्सा और जीवन शैली सुधार पर विशेष बल दिया। उन्होंने तेलुगु और अंग्रेजी भाषा में चिकित्सा पद्धतियों पर लगभग 100 पुस्तकें लिखीं जिनमें से 63 पुस्तकें विशुद्ध रूप से भारतीय चिकित्सा प्रणालियों और आयुर्वेद के अनुवादों पर आधारित थीं। उनकी आत्मकथा आयुर्वेद के पुनरुत्थान का प्रामाणिक दस्तावेज मानी जाती है। डॉक्टर अजंता लक्ष्मीपति को देश भर में भिषग रत्न, प्राणाचार्य तथा आयुर्वेद वाचस्पति जैसी कई उपाधियों से विभूषित किया गया था। आजीवन देश और समाज की सेवा करते हुए उन्होंने 6 अगस्त सन 1962 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन लें, कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

पिछले कार्यक्रम में नटखट विवेकानंद के बाल्यावस्था की बातें जानकर आपको भी हंसी आ गई होगी। बचपन से ही वे किसी बात को बिना सही तरह से समझे नहीं मानते थे। प्रश्न पे प्रश्न कर वे अगर जवाब से संतुष्ट होते तो ही बात को मानते थे। छुआछूत जातिगत भेदभाव से वे घृणा करते थे। शरारती तो वे थे पर मनपसंद की बातें हो तो घंटों ध्यान लगाकर सुनते या करते थे। आइए उनके बचपन की कुछ और बातें जानें।

0: एक पेशावरी मुस्लिम नरेंद्र नाथ के पिता विश्वनाथ बाबू के मुवक्किल थे। वे नरेंद्र के प्रति विशेष स्नेह रखते थे। उनके आने का समाचार पाते ही नरेंद्र उनके पास आ जाता और उनकी गोदी में बैठकर पंजाब और अफगानिस्तान के घोड़े और ऊंट की सवारी की भ्रमण कहानियां एकाग्र चित्त से सुनता।
1: चाचा जी, वहाँ लोग ऊंट की सवारी क्यों करते हैं? वहाँ बग्गियाँ नहीं चलती क्या?
2: ओए नहीं मेरा बेटा, मेरा बच्चा, ओए वहाँ तो रेगिस्तान है, रेगिस्तान। ओए सड़कें ज्यादा है नहीं, सो लोग ऊंट पर ही एक जगह से दूसरी जगह को जाती है।
1: हाँ, पर ऊंट तो बहुत धीरे धीरे चलते हैं ना।
2: हो, इसीलिए तो मेरा बच्चा वहाँ पहुँचने में बहुत महीना लग जाते।
1: फिर वो खाते पीते क्या है? लंबे सफर से थक जाते होंगे।
2: ओए होए, ओए वहाँ बीच बीच में सराय बना होती, वहीं पर हम रुकते है, आराम करते है, ओए फिर चलना शुरू करते है। और सफर भी रात को ठंडा ठंडा में करते है। दिन में बहुत तेज गर्मी होते है और तेज धूप होते है।
1: पर बड़ा मजा आता होगा ना चाचा जी? आप मुझे वहाँ ले चलेंगे ना? मैं भी ऊंट की सवारी करूँगा।
2: ओए हमारा बच्चा, ओए तुम अभी बहुत छोटा है, बस दो उंगल बड़ा होने को मांगते है, फिर हम तुमको जरूर ले जाएगी।
0: आग्रह की अधिकता से वो कभी कभी दूर से ही बोलता।
1: चाचा जी देखिए, मैं रात भर में दो उंगल बढ़ गया हूँ, अब आप मुझे ले चलिए।
2: ओए देखूं तो, ओए हमारा बच्चा वाकई में बहुत बड़ा हो गई, अरे तुम तो दो उंगल ऊंची हो गई। ओए अब तो ले जाना ही पड़ेगी, ले जाना ही पड़ेगी। ओए हमारा बच्चा मिठाई खाएगा, ओए तब तक ये मिठाई खा लो बच्चा, ओए तुम्हारे ही वास्ते लाए है, तुमको पसंद है ना?
1: लाइए लाइए, कहाँ है, मैं दोनों ही खाऊंगा।
0: नरेन बड़े चाव से चाचा की गोद में बैठकर मिठाई खाते और वहां बैठे दूसरे लोग इस अनाचार को देखते और सिहर जाते। परिवार में भी इस बात को लेकर बवंडर मचता, पर विश्वनाथ बाबू कट्टरपंथी ना थे, वे इस बात को हंसकर टाल देते।
3: विश्वनाथ बाबू के दफ्तर में भिन्न भिन्न समाज के मुवक्किल आते थे, उनके लिए अलग अलग हुक्के की व्यवस्था थी। एक दिन कमरा खाली देखकर नरेंद्र वहां आया और हुक्के की नली में मुंह लगाकर कश खींचने लगा। विश्वनाथ ने मुवक्किलों के साथ कमरे में दाखिल होकर नरेंद्र को हुक्का पीते देख लिया।
4: बिले, ये क्या हो रहा है?
1: बाबा, सब कहते हैं दूसरी जाति के लिए रखा हुआ हुक्का नहीं पीना चाहिए। मैं तो देख रहा था ऐसा करने पर क्या होता है, मैं तो वैसा ही हूँ। ये छत टूट तो नहीं पड़ी, मैं तो परीक्षा कर रहा था कि अगर मैं जाति भेद ना मानूं तो क्या होगा।
5: नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते, पाप लगता है।
1: क्यों, क्या होगा, क्या वह मर जाएगा? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के हाथ का क्यों नहीं खाता? बाबा कहिए ना, क्या होता है?
0: विश्वनाथ बाबू ने हंसते हुए उसे प्यार से कहा।
4: बिले, तू बड़ा दुष्ट हो गया है रे।
3: नरेंद्र ने सीताराम की मूर्ति को तोड़कर दूसरे ही दिन उसके स्थान पर एक शिव मूर्ति की स्थापना कर दी। माता का अनुकरण कर वे प्रतिदिन शिव पूजा करते थे, कभी पद्मासन में बैठकर ध्यान लगाते तो कभी अपने साथियों को बुलाकर सब मिलकर शिव मूर्ति को घेर कर ध्यानस्थ होकर बैठे रहते। यह खेल नरेंद्र को बहुत भाता था। उस समय उनके मन में क्या चलता था वही जाने। एक दिन ध्यान से उठकर उदास होकर माँ के पास गया और कहा,
1: माँ, मुझे शिवजी के दर्शन क्यों नहीं होते? सचमुच क्या मैं दुष्ट हूँ? इसीलिए शिवजी ने मुझे अपने पास से हटा दिया है।
6: ऐसा किसने कह दिया रे तुझे?
1: मैं अगर साधु हो जाऊँ तो क्या शिवजी मुझे अपने पास लौट आने देंगे?
6: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
3: यह बात परिवार की महिलाएं सुन रही थीं, वे अवाक रह गईं।
7: बहू, ये तुमने क्या कह दिया है बेटे से? एक ही तो बेटा है तुम्हारा, उसे भी सन्यास लेने को कह रही हो? कैसी माँ हो तुम?
3: यह बात अनजाने में कह जाने के बाद माँ का हृदय किसी अनजान डर से कांप उठा। उसी पर किसी के टोकने पर वह और विचलित हो उठी। अपने दादा की तरह अगर नरेंद्र भी संसार छोड़कर चला गया तो? पर मन ही मन शिव का ध्यान लगाकर उन्होंने इस डर को मन से हटा दिया और कहा,
6: देखो भाई, अब भगवान की जो इच्छा होगी वही तो होगा ना। अब मैं उसमें बाधा देने वाली कौन हूँ?
1: तब तो मैं सन्यासी ही बनूंगा।
0: बचपन से ही लगातार रामायण और महाभारत सुनते सुनते उन ग्रंथों का बहुत सा भाग उन्हें याद हो गया था। वे कभी कभी सुमधुर स्वर में उन्हें सुनाकर श्रोताओं को मुग्ध कर देते थे। कभी कभी भिक्षु गायकों से सीखे हुए राधा कृष्ण या सीताराम के गीतों को गाकर घर वालों और अपने पिता के मित्रों को आनंद प्रदान करते। लाड़ प्यार से पले नरेंद्र स्वतंत्रता प्रिय होने पर भी उनके बाल चरित्र में अपने माता पिता के नाना प्रकार के सद्गुणों का समावेश हो गया था। घर में नीति शास्त्र एवं लोकाचार का कठिन नियम ना होने पर उनका चरित्र अपनी स्वाभाविक मधुरता के साथ स्वतः ही विकसित हो रहा था।
3: श्री रामचंद्र जी के परम भक्त हनुमान के अलौकिक कार्यों की कथाएं सुनना नरेंद्र को बहुत अच्छा लगता था। माता से उन्होंने सुना कि हनुमान जी अमर हैं, वे अभी भी जीवित हैं। तब से उन्हें देखने के लिए नरेंद्र के प्राण छटपटाने लगे। एक दिन वे माता के साथ कथा सुनने गए। कथाकार पंडित जी नाना प्रकार से हास्य रस मिलाकर हनुमान जी के चरित्र का वर्णन कर रहे थे। कथा खत्म होने पर नरेंद्र धीरे धीरे उनके पास गया और उनसे पूछा,
1: पंडित जी, आपने कहा हनुमान जी केला खाना पसंद करते हैं और केले के बगीचे में ही रहते हैं, तो क्या मैं वहां जाकर उनके दर्शन पा सकूंगा?
8: हाँ बेटा, केले के बगीचे में ढूंढने पर तुम उन्हें पा सकते हो।
3: फिर क्या था, दूसरे ही दिन घर के पास वाले केले के बगीचे में केले के पेड़ के नीचे बैठ गए और हनुमान जी की प्रतीक्षा करने लगे। काफी समय बीत गया पर हनुमान जी नहीं आए। अंत में लाचार होकर शाम ढलते घर वापस आए। माँ को सारी घटना सुनाकर इसका कारण पूछा। बालक के विश्वास पर चोट न करना ही माता ने उचित समझा और बेटे को प्यार से चूम कर कहा,
6: ओले बेटा, बेटा तुम दुखी मत हो, शायद

0: की कोशिश की या नहीं ये तो ज्ञात नहीं, पर हनुमान जी के प्रति गंभीर श्रद्धा भाव उनके मन से कभी लुप्त नहीं हुआ। ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करने के इच्छुक प्रत्येक युवक को विवेकानंद कहा करते थे।
1: महावीर के चरित्र को आदर्श बनाओ। हर घर में महावीर हनुमान जी की पूजा होनी चाहिए। इस दुर्बल जाति के सम्मुख उन्हीं का आदर्श रखना चाहिए। शरीर में शक्ति नहीं, हृदय में साहस नहीं, क्या होगा मांस के लोदों से। मैं चाहता हूं हर युवा महावीर जैसा ताकतवर हो।
2: बोध या विचार शक्ति के कुछ और बढ़ने के बाद उनमें साधु या भिखारियों के प्रति एक स्वाभाविक आकर्षण दिखाई पड़ा। उनके आने पर वे उनके निकट दौड़ जाते, उन्हें कोई रोक नहीं पाता और जो भी मिलता उन लोगों को दे देते थे। एक दिन नई धोती पहनकर साथियों के साथ खेल रहे थे, तभी दरवाजे पर आवाज हुई।
3: नारायण हरि, नारायण हरि, अरे कोई है?
4: आओ बाबा, अंदर आओ।
3: बेटा, कुछ पहनने ओढ़ने का मिल जाए तो।
4: हाँ हाँ, लो ना, मेरी यह धोती बिल्कुल नई है, आज ही तो पहना है, ये ले लो।
3: तुम्हारी ये छोटी सी धोती मैं कैसे पहनूंगा बेटा? पर तुम्हारा दिया दान मेरे सर आंखों पर, लाओ मैं से अपने माथे पर लपेट लूं। जीते रहो बेटा, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो।
0: साधुओं के आने पर नरेन को किसी कमरे में बंद कर दिया जाता था, पर खिड़की से वे उन्हें बुलाकर जो कुछ मिलता दे देते थे और घर के लोगों को हरा दिया समझकर खुश हो जाते।
2: दोनों बड़ी बहनों हरमोहिनी और स्वर्णमयी को वे हमेशा छेड़ा करते। दोनों हैरान परेशान होकर नरेन को पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ती, पर पकड़ न पाती। उन्हें और भी तंग करने के लिए नरेन किसी गंदे नाले में उतर जाता या किसी कूड़े के ढेर पर चढ़ जाता। बहनें उनका पीछा करती।
5: रुक जा बिले, इधर आ, आज तुझे अच्छा मजा चखाऊंगी। मेरे कपड़े में अपना गंदा हाथ क्यों पोछा, बोल।
4: ओह, मेरी किताब तूने ही छुपाई है, निकाल निकाल दे जल्दी, नहीं तो मैं माँ को कह दूंगी।
5: एक बार पकड़ लूं तो तेरी खैर नहीं बिले। स्वर्ण, तू उधर से जा, उधर जाकर पकड़, मैं इधर से इसका रास्ता रोकती हूँ।
4: आओ आओ ना, आओ पकड़ो मुझे, इस गंदी नाली में उतरो, तब तो पकड़ पाओगी मुझे। अच्छा चलो, मैं ही निकल आता हूँ, पर मेरे कपड़े और पैर गंदे हो गए हैं, मुझे छुओगी क्या?
5: हाँ हाँ पकड़ूंगी, रुक, बिल्कुल पकड़ूंगी।
4: पकड़ोगी तो ये लो, मैं कूड़े के ढेर पे चढ़ गया, अब आओ यहाँ, पकड़ो पकड़ो पकड़ो।
6: माँ देखो ना, परेशान कर रहा है माँ, किताब माँ, देखो ना माँ।
2: दोनों बहनें हार कर रोते रोते अंदर चली जाती हैं।
0: दत्त भवन में अनेक पालतू जानवर थे। नरेन को उनके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। विलायती सफेद चूहा, बंदर, बकरा, कबूतर, काकातुआ और अनेक तरह तरह की चिड़िया थी। घर की गाय के साथ नरेन की पक्की दोस्ती थी। उसके गले में माला पहनाकर माथे में सिंदूर

0: दूर लगाकर शरीर पर हाथ फेरकर वे उसके साथ कितनी मीठी मीठी बातें किया करते थे, और वो गाय भी उनके शरीर पर मुंह रगड़कर प्यार जताती थी।
1: सन्यासी होने की इच्छा उन्हें बचपन से ही थी। एक दिन एक गेरुआ वस्त्र को कॉपीन की भांति लपेटकर वे घूम रहे थे। उसे देखकर माँ ने पूछा,
2: क्यों रे बिले, है ये क्या कर रहा है?
3: माँ, मैं शिव हो गया हूँ, अब मैं ध्यान करने जा रहा हूँ।
2: अरे क्यों भला?
3: मैंने सुना है कि ध्यान में बैठे ऋषि मुनियों के बालों की जटा बढ़कर धरती को छूने लगती है, और धीरे धीरे बरगद के पेड़ की जटा की तरह धरती में घुस जाती है। पर मैं तो कल भी ध्यान करने बैठा था, मेरे बाल तो बड़े ही नहीं, ना ही जमीन में घुसे, क्यों माँ?
2: बेटा, एक आध घंटा या एक दो दिन में जटाएं नहीं बढ़ती, कई साल लग जाते हैं।

0: नरेंद्रनाथ के पास खेलों की कमी ना थी। उनका एक प्रिय खेल था राजा बनने का खेल। अपने संगी साथियों के साथ पूजा घर जाने वाली ऊंची सीढ़ी पर यह खेल चलता था।
1: मैं राजा हूँ, इसीलिए मैं सबसे ऊंची सीढ़ी पर बैठूंगा। तू मंत्री है, इस पर बैठ। तू तो कोतवाल है, वहाँ बैठ। सेनापति, तुम इधर आकर बैठो। और तुम सब सभासद हो, नीचे बैठो। अब दरबार शुरू होगा, सब लोग मुझे प्रणाम करो।
2: प्रणाम महाराज।
1: मंत्री, राज्य का क्या समाचार है?
3: प्रजागण परम सुखी है महाराज।
1: सेनापति, कहो क्या कहना है?
4: महाराज, एक डाकू बड़ा उत्पात करता है, आए दिन हमला करके प्रजा को लूट लेता है।
1: उस दुष्ट आत्मा का सर काट दो।
0: तुरंत कुछ बच्चे डाकू को पकड़ने दौड़ते और वो सदर दरवाजे से भागकर जान बचाता। राजा सिंहासन पर बैठे बैठे मुस्कुराते रहते।
5: इसी तरह खेलते खिलाते नरेंद्र बड़ा हो रहा था। साथियों ने सर्वसम्मति से उसे नेता मान लिया था। जहाँ भी जाते, जो भी करते, सब बच्चे नरेंद्र का ही कहा मानते। उम्र में बड़े बच्चे भी उसी को नेता मानते थे।
0: नरेंद्र बचपन से ही निर्भीक और साहसी थे। उसके एक सहपाठी पड़ोसी के घर चंपा का एक पेड़ था। अक्सर नरेंद्र उस पेड़ पर चढ़कर डाली में पांव फंसाकर और सिर नीचे लटकाकर झूलता था। एक दिन उस घर के मालिक दादाजी राम रतन बसु ने उसे ऐसा करते देख लिया। उन्हें लगा चंपा की नरम डाली टूट जाने पर नरेंद्र को चोट लग जाएगी। वो बाहर आकर नरेंद्र को समझाते हुए कहते हैं,
6: बेटा नरेंद्र, इस तरह चंपा की डाली पर नहीं झूलते, नीचे आ जाओ, मत चढ़ो पेड़ पर।
1: क्यों क्यों, इस पेड़ पर चढ़ने से क्या होता है?
6: नीचे तो उतरो, बतलाता हूँ।
1: ये लीजिए, आ गया, अब बताइए।
6: उस पेड़ पर एक ब्रह्म राक्षस रहता है, भयानक गुस्सेल है, पेड़ पर चढ़ने वाले की गर्दन मरोड़ देता है।
1: अच्छा दादाजी।
0: दादाजी के अंदर जाते ही नरेंद्र फिर से पेड़ पर चढ़ने लगा।
7: नरेंद्र, सुना नहीं दादाजी ने क्या कहा? ब्रह्म राक्षस गर्दन मरोड़ देगा।
1: अरे आने दे ब्रह्म राक्षस को, मैं उसके शरीर पर थूक कर उसे वशीभूत कर दूंगा।
7: नहीं बाबा, मुझे तो डर लगता है, मैं तो चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ।
1: तू भी जैसे गधा है। कोई आकर एक बात कहके डरा गया और तू उसी पर विश्वास करने लगा।
7: तो तू नहीं मानता ब्रह्म राक्षस को?
1: तेरे दादाजी की बात अगर सही होती तो वो बहुत दिनों पहले ही मेरी गर्दन मरोड़ देता। मैं तो अक्सर झूलता हूँ, मुझे तो कभी नहीं दिखा वो। जा जा जा, डरपोक कहेगा।
0: बच्चे की बुद्धि का विकास माता पिता की गोद में बैठकर ही होता है। विशेषकर नरेंद्र के माता पिता का था अपूर्व उदार हृदय और ज्ञान समृद्ध प्रगतिशील मन, अतः उनका मानसिक विकास और भी तेजी से और समृद्ध हुआ था। रामायण और महाभारत की कहानी, देवी देवताओं की कथा एवं भारत की सांस्कृतिक परंपरा के स्वरूप को उन्होंने इसी बचपन में लाड़ प्यार के माध्यम से ही ग्रहण करना शुरू किया। उनके सुकुमार मन में इन सब की गंभीर रेखा चित्र खिंच गई थी, इसलिए परवर्ती काल में अपने व्याख्यान के प्रसंग में इन सब बातों का उल्लेख कर एवं सुंदर भाषा में उनकी व्याख्या कर श्रोताओं को मुग्ध कर देते थे।
5: रामायण पर उनका इतना अधिकार हो गया था कि एक बार घर के पास रामायण गायकों के एक दल द्वारा एक पद विशेष को गाते समय कई पंक्तियां भूल जाने से अशुद्ध रूप से गाने पर नरेंद्र ने पदों को शुद्ध रूप से गाकर सभी लोगों से प्रशंसा पाई थी। गायकों ने भी अपनी भूल मानकर श्रोताओं से माफी मांगी थी और नरेंद्र को मिली थी ढेर सारी मिठाइयां।
0: उनके महाभारत पाठ के संबंध में भी एक मर्मस्पर्शी घटना जानी जा सकती है। सन 1869 में दत्तग्रह के तत्कालीन मुखिया नरेंद्रनाथ के छोटे दादाजी काली प्रसाद दत्त मृत्युशैया पर पड़े थे। आखिरी समय में उनमें एक अंतिम इच्छा जगी कि मृत्यु पूर्व परिवार के बच्चों में से किसी के मुख से महाभारत का पाठ सुनेंगे। लज्जावश कोई भी बालक या बालिका पाठ करने के लिए राजी नहीं हुआ। सबने सबसे छोटे नरेंद्र से पाठ करने के लिए कहा। वे तुरंत अपने छोटे छोटे हाथों में विशाल काय महाभारत को समाहित किए हुए दादाजी के कमरे में आए और अपनी मधुर वाणी में महाभारत के कई पन्ने पढ़कर सुना दिए।
5: केवल अंतिम घड़ी में ही नहीं, उसके पहले भी दादाजी ने नरेंद्र के मुख से कई दिनों तक संपूर्ण रामायण का पाठ सुना था। पाठ के समय माँ भुवनेश्वरी देवी भी उपस्थित रहा करती थी।
0: परलोक की ओर आंखें पसारे हुए वृद्ध ने अपने इस कुल तिलक के महाभारत पाठ से उल्लासित होकर आशीर्वाद दिया।
8: बेटा, समय आने पर तुम निश्चय ही बड़े आदमी बनोगे। हाँ
9: मेरे बेटे को यही आशीर्वाद दें कि वो हमेशा सच के पथ पर चले और मानवता की सेवा करे।
8: तुम्हारी जैसी माँ पाई है इस बालक ने, इसे कौन रोक सकेगा। अवश्य ही ये हमारे परिवार का नाम रोशन करेगा।
9: बिले बेटा, दादाजी तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, उन्हें प्रणाम नहीं करोगे।
1: हाँ माँ, दादाजी प्रणाम।
8: जीते रहो बेटा, जीते रहो, खुश रहो, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। आलेख डॉक्टर पापियादास गुप्ता, निर्देशन चैतन्य भट्ट, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वरा संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे प्रत्येक बुधवार और रविवार इसी समय अपने इस कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद में।